जीवनयाता शीतलता की माँ, जीवनयाता जीवित यही माँ, अलेना पाँच छेगु जीवनया पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम, छेगु जीवनया सदायम पासा, किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलेना पं छेगु जीवन या पला पला नहीं फुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन या त शीतलता की म जीवन या त जीवित यै म अलिना प छिगु जीवन या पला पला न्हि फुकि म किप्स एफएम छिगु जीवन या सदाय म पासा किप्स 98.3 एफएम।

0: This is
1: Hits 98.3 FM, your companion.
2: Hits FM 98.3 presents Pop Hour.
3: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार.
2: Every Friday 12 PM.

0: Yo ho, Kips 98.3 FM. Tapai Sangako Sahayatra.
1: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्स हरू कार्यक्रम
0: म्यूजिक मज़ा
1: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र किप्स 98.3 FM मा

0: साइकिल, स्कूटर, कार, वैन, जीप, पिकअप, हाथी गाड़ी, बस, ट्रक, एक्सकावेटर, ट्रैक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी।
1: सम्पर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू। फोन नंबर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स।
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: You can dance.
5: You can sing. All you gotta do is
6: just tune in.
5: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
7: अब इन्टरनेट ढिलो होइन, छिटो, स्मार्ट र सुरक्षित।
8: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा।
9: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट।
8: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित।
9: हानिकारक साइट, असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
10: सुबिसु, छिटो पनि सुरक्षित पनि। थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
11: 01-42-35-888 98-12-35-888।
12: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत। Just tune in, radio, naya generation ko.
5: Enjoy the cover version of your favorite songs. Covermania at 98.3. Covermania at 98.3.
11: Every Monday 5 p.m. and Friday 8 p.m.
13: Raja Motiwa Motina Ewa Ni Pushi Changutu Kele
9: Nepal Bhashaya Nyai Pushi Changmeta
14: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: तीस वर्ष देखि इंटरनेट को स्पीड में मात्र होइन प्रविधि सुविधा सृजनशीलता में पनि सधैं छिटो वर्ल्डलिंक मनसंग जोड़िएको तार तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक
1: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स में पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाड़ी बस ट्रक एक्सकावेटर ट्रैक्टर जेनेरेटर लगायत इन्वर्टर का ओरिजिनल ब्रांडेड बैटरी विथ ओल्ड बैटरी एक्सचेंज फैसिलिटी
2: संपर्क बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुलेश्वर काठमांडू फोन नंबर 5302678 5302678 लोकेशन को लागी गूगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमांडू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
3: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
5: Listen to your favorite classic English songs. Only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station Kips FM 98.3 megahertz.
6: This is Kips 98.3 FM, your companion.
7: Are you ready for the big O?
8: This is In Box.

0: Life-Changing Quotes。सफल मानिस र असफल मानिस दुबै गल्ती गर्छन्, तर सफल मानिसले आफ्नो गल्ती दोहोराउँदैनन्। यो भनाई हो हेरोल्ड प्रिन्सको।
1: टिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार।
2: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
1: गजल संसार।
2: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
0: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
3: हजुर न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ। फोन नम्बर

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: Kids 98.3 FM, your companion.
1: कार्यक्रम कलियुग टाइम, कलियुग टाइम.
2: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.
3: What's the secret to success?
4: Simple. Say yes to radio advertising.
3: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
4: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
3: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
5: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
6: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678. 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
7: यू कैन डांस,
8: यू कैन सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
9: जस्ट ट्यून इन
8: किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज, योर कंपेनियन, द रेडियो ऑफ न्यू जेनरेशन.
10: हामीलाई सुन्नुहोस् www.kipsfm.com मार्फत. जस्ट ट्युन इन रेडियो, नयाँ जेनेरेसनको.

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: यो KIPS 98.3 FM तपाईसँगको सहयात्रा
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
2: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट KIPS FM 98.3

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: द वीकली काउंटडाउन शो ऑफ टॉप 10 इंग्लिश नंबर्स विद एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स Classic Choice, Info House, Fresh Hits, and many more. Do tune in to Weekly 10. Weekly 10.
3: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
2: On Kim.

0: भाषाया न्याई पुसिचौं मित।
1: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz।
2: नेपाली पॉप फ्लैशबैक एवरी संडे एंड ट्यूजडे 10 PM, थर्सडे 9 AM एंड सैटरडे 5 PM।

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Kips FM 98.3 MHz मा क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
1: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: छोडेर जानेलाई भइगो नि जम तर के र जाने
1: किप्स अनप्लग्ड
0: लास्ट मोडमा नहीं
1: नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्सहरुका अनप्लग्ड गीतहरु सुन्न नछुट्याउनु होला हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।

0: number 14.
1: जमाने की तरह हम भी तोड़े हैं गए।
2: मूवी
3: पति पत्नी और वो दो।
2: सॉन्ग
3: हमने वही लगाया दिल।

0: XFM 98.3 presents Pop Hour.
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार
0: Every Friday 12 p.m.

0: यो हो गिफ्ट्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
1: राजा मतिवा मती नएवा ने पुछे चंगुटु खेले
2: नेपाल भाषाया न्याय पुसे चौ मेता
3: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
4: What's the secret to success?
5: Simple. Say yes to radio advertising.
4: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
5: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
4: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
3: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마르폿. Just tune in radio 나야 generation 고.
4: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
5: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर, काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
1: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्सहरु कार्यक्रम
6: म्यूजिक
1: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र KIPS 98.3 FM मा.

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हॉटस्पॉट हरुमा फ्री इंटरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज ऑलवेज ऑन जहां पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टू माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस?
3: सिंपल, say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising, affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
4: नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स 98.3 FM।
5: हजुर नमस्ते अनि स्वागत छ, यो किप्स FM 98.3।
6: नमस्कार किप्स 98.3 FM।
7: यो हो किप्स 98.3 FM, तपाईँसँगको सहयात्रा।
8: बलिउड गोल्डन हिट्स।